0: जी दोस्तों प्रोग्राम शुरू है खबर है संदर है फरमैशी प्रोग्राम खबर है संदर दे विच फरमैशी प्रोग्राम सराय की खुशबू दे विच आ गए वंजे ते यानी कि गालियां और नगमे गीत गजल ते रिकाटा तुसा भी आ सकदे मोबाइल साडे नाल लैन दे उते 09635114588 साडा राबता नंबर है कॉल आंदी पे देखण मेरा मीठा भिरा कौन है हेलो अस्सलाम वालेकुम दिल को टकोर मिल वे दीवाना
1: माशाल्लाह तू या मैंने दसे बा मैंने उडा अल देना है प्रोग्राम घंटा डेढ़ घंटा पूरा सुन दे रहा
0: मैं खुशी होने सर रब्बिल आलमीन कहंदा मुताज न करने हमेशा में खुश ते हंस देते वज दे रहो किमे लगदा पिया प्रोग्राम
1: प्रोग्राम त माशाल्लाह मजा करेला पर रंग रंग गावन सुन दे पे पश्तो वाले के सरे के वाले
0: बिल्कुल जी इको कहंदे फरमाइशी प्रोग्राम पश्तो सराकी उर्दू गजल गीत गावन सब कुछ इंदी छे के आप ना आए दे तो सारी फरमाइश आज कोई फरमाइश आंदी भी दीवाना साहब
1: मगर तुले नहीं आ गया सुना रे बाल बत्तियां में माई सा को मारो संगला नाल
0: अतौला तो एक दफा लग चुका है अगर कोशिश कर न लगे को बिया गावण होवे तेरे कोल तो ओ इतला देसु
1: बिया मस्त मलांग चाकी ते साडा दिल तांग चाकी ते
0: भाई कण वता तौला ला ठीक है
1: सही है सही है
0: कह यार दोस्त अगर सलाम दे में दीवाना साहब फरमाइशी की फरमाइश आई फैजान दी फैजान शीन आसमान जरे जरे नाजिया इकबाल दी आवाज च दोस्तों देख दें देख रमजान दीवाने दे एक अतौला लाने चा तेरे को फैजान दर शीन आसमान जरे ओ गुले ने पे ते उंदे बाद गाना बाद ही लगती फिलहाल दीवाना साहब दा अतौला सुने चा ते अच्छी गाल उसी आओ दीवाना साहब रल के सुनने आवाज अतौला खान दी।

0: जी वेलकम मतिउल्लाह शेगरा आवाज गुलजार आलम की फरमाइश की अस ते नाल एक बे दोस्त अस शेगरा मतिउल्लाह फरमाइश पूरी थी है मतिउल्लाह साहब गाना सुनाओ सिया जबरदस्त गाना सुनाओ सिया ते प्रोग्राम शुरू है फरमाइशी प्रोग्राम फरमाइशी सरेकी खुशबू दे बीच खबर है संदर है यानी कि गालियाँ और गीत बिल्कुल तुस आ सकते मेरे नाल लैन ते ते तुस अपनी फरमाइश कर सकते ये का लांदी पे देखन देख दे मेरा मीठा बिरा कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे सोना मीठा अब्दुल हादी मेरे दोस्त तेरे आवाज कटी नहीं पई है जा बदला जब गरे शादी जो कौन लेने पे मेरा मीठा बिरा। हेलो मेरा मीठा कौन लेने पे शादी चू। हेलो दोस्तों घरे शादी चू काल आई लेकिन आवाज नहीं आंदी पी इंदा आवाज कटी न पी आई घरे शादी आई दोबारा कोशिश करो इंशाल्लाह काल मिल वैसी भाई काल आंदी पे मेरा मीठा बिरा देखन कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम आले
0: हाल मेरा सोना मीठा बिरा चो के ला खैरा सारा जार दे सो आदम खान शेख लोनाई वाला आदम खान हर कलाय तरतवा यमा पर स्टूडियो से चरंगा शहर तबियत शरदा बिल्कुल ठीक ठाक है चना में जी
1: अलीशान जरगर
0: अलीशान जरगर ठीक सो मां जार दे सो ता बिल्कुल दा गाना ता ता लगाऊ प्रोग्राम चरंगा लेगी जी चाहता फरमाइश या सलामुना वर कहे
1: प्रोग्राम उडेर सरा पान लगा जे सफान कई असलामु नवर कोई सत्सा कुरीशी ता मंसूरा जी ता
0: ठीक
1: मतिउल्लाह से करे वाल सतिउल्लाह लोनाई वाल की सोच
0: जी जी
1: ओ खैर दई
0: अल्लाह दे खुशहाल का अल्लाह दे आबास टोलो तो सलामु नवर से दल टोलो बस सलामु न बारवी दली प्रोग्राम आरवी लगे आदि तावल सलामु नवर तवर से दल गुरु चे पल्ली के बांधे बल चौक दा पल लैन बांधे फरमैशुना दी फरमैशी प्रोग्राम दा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम मेरा मीठा अल्लाह दे खुशहाल का अल्लाह दे आबाद का चौके लकुम जी ना जार दे सो शेख उतार ना खलीला खलीला तात हर कलाय वाई मा पस्टूडियो शे आला दे कदर मान का चरंगा शाये बराबर है तबियत शदा
1: यार तब आलो है तबियत शदा चे प्रोग्राम शुरू चला था पर गैंटो शुरू न दर्जी न वो तो मात की मसीन चला
0: चलो शुक्र शुक्र दा होस को मिला उसला जड़ा रमान दे पूरा उसला
1: होस को मिला उसला
0: खलील खाना चरंगा तबियत शदा कलाय दे शदा गर्मी चवाई
1: यार गर्मी को देर खंडवर आवाज दी दरन को बुखार कई
0: ठीक सवाला दे खैरो की प्रोग्राम चरंगा लगी जी
1: प्रोग्राम लगी सब प्रेम पप्पा जी
0: जी जी चेरे फरमाइश दे रहा वड़ा दा
1: सेंसा वाला बाजार गुड़ के फसल को है तेरा वो मर गरो
0: दा यो वार तो ब्यारा था वो शवा
1: सेंसा वाले बाजार गुड़ के फसल को है तेरा वो मर गरो
0: सेंसा पा आवाज चे दा
1: जो जो
0: जी बिल्कुल चाहता सलाम वर का है वालेकुम अस्सलाम खलीला जार देसा कुर्बान देसा आ डेरा मनना खलील खाना डेरा मनना प्रोग्राम से दे सवाक से ला डेरा मनना अल्लाह दे कदर मन का मुझ प्रोग्राम दा सराय की खुशबू से जा खबर संदर फरमैशी प्रोग्राम दा रजो चिदना मक्शे खलील ना मक्शे चे चा फरमैश कड़ाओ आगा गाना वरता वो लगाओ रजो चे गड़ा वारू

0: It's 1:30 PM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 मेगाहर्ट्ज़
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 मेगाहर्ट्ज़
3: अमन रेडियो 88.4

जी बहुत शुक्रिया केसन के ऊपर एतमाद करने का। और मैंने आपको कल भी बताया था कि केसन कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है कि वो एक साथ आपके लिए कोई दर्जन भर प्रोडक्ट लेकर आई थी, बल्कि केसन वो कंपनी है कि जिसने स्टार्ट में एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी जिसका नाम है केसन हेयर ऑयल। वो हमारी तख्लीक थी, वो हमारी ख्वाहिश थी, वो हमारी विश थी कि आपको हमने बालों के लिए, बालों की ट्रीटमेंट के लिए एक मियारी ऑयल देना है। उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट आए हैं वो आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक आए हैं। यानी आप लोगों ने ख्वाहिश की है कि हमें केसन कंपनी से ये चीज़ चाहिए, तो हमारे माहरीन ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया और आपको आपकी उमंगों के मुताबिक हमने प्रोडक्ट बना कर दी। ये सिलसिला चलता आ रहा है और ये सिलसिला आज भी जारी है और आपकी एक एक लिसनर की, एक एक यूज़र की बात को हम बड़ी अहमियत देते हैं। और जो कोई हमसे हमारे हेल्पलाइन पर रब्ता करता है और हमसे पूछता है, वो हमें बताता है या हमें सजेशन देता है कि सर ये प्रोडक्ट केसन में क्यों नहीं है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी आप लोगों को अशद ज़रूरत थी और आप बहुत अरसे से वो तलब कर रहे थे। और उस प्रोडक्ट की तलब कब पैदा हुई? उस प्रोडक्ट की तलब पैदा हुई जब हमने आपको आज से कुछ 6-7 माह पहले एक प्रोडक्ट दी, मोटे लोगों को कमज़ोर बनाने का, स्मार्ट बनाने की हमने प्रोडक्ट दी, यानी कि मोटापे को ख़त्म करने की जब हमने आपको प्रोडक्ट दी केसन वेट कम पेट कम। तो जब आपने उसको इस्तेमाल किया और कुछ ही महीनों के अंदर आप स्मार्ट हो गए, तो फिर आपको लगा कि भाई केसन ही वो कंपनी है जो आपकी हर एक विश को पूरा करती है, और ऐसी विश जिसका ताल्लुक खूबसूरत नज़र आने से है। केसन का स्लोगन प्यारा लगना तो सबका हक है। और इस हवाले से आप हमारे थीम ट्रैक्स भी सुनते रहते हैं जिनके अंदर जो है आपको जो है हमारी कंपनी की जो आवाज़ होती है वो सुनाई देती है, जो हमारी कंपनी की थीम है वो आपको सुनाई देती है। और प्यारा लगना इस थीम को लेकर जनाब हम आगे बढ़ रहे हैं।

ना, प्यारा लगना आप सबका हक है, और जो भी चीज आड़े आएगी ना खूबसूरती के, हम उसे खत्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जो भी चीज आपकी खूबसूरती को डिस्टर्ब करेगी, जो भी चीज आपकी खूबसूरती के आड़े आएगी, तो हम उसको नेचुरल कुदरती एजाज से उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मोटापा, देखिए जब आप मोटे होते हैं तो आप कभी प्यारे नहीं लगते हैं, डबल रोटी से लगते हैं जनाब, एंजिला प्यारे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो प्यारा लगने के लिए हमने आप लोगों को प्रोडक्ट दी, वेट कम पेट कम, और उस प्रोडक्ट ने आपको सही तरीके से स्मार्ट किया होगा। उसके बाद फिर आप लोगों की तलब बढ़ी और आपने कहा कि भाई आपने मोटे लोगों को तो सोच लिया, लेकिन आपने कमजोर लोगों का क्यों नहीं सोचा? केसन ने दुबले पतले लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा, जो कमजोर हैं, जिनके जिस्म के अंदर गोश्त नहीं है, जिनके जो जिनको देखते हुए हैंगर का गुमान होता है कि ये तो बंदा नहीं, ये तो हैंगर है, ठीक है जनाब, और उसकी हड्डियां नजर आती हैं। तो आप लोगों ने हमसे ये डिमांड शुरू कर दी कि भाई केसन हमें एक ऐसी प्रोडक्ट भी तैयार करके दे जो हमारे जिस्म को भरे, जो दुबले पतले कमजोर जिस्म के अंदर जान डाले, जो हमारी कमजोरी को खत्म करे, हमारा चेहरा खिल उठे, और वो जो चिपके से गाल हैं, पिचके से गाल हैं, वो भर जाएं, चेहरा भर जाए, पूरा जिस्म भर जाए। और बात वही कि प्यारा लगे तो जनाब कमजोर आदमी बिल्कुल भी प्यारा नहीं होता और मोटा आदमी भी बिल्कुल प्यारा नहीं होता। तो हमने आपको पहले मोटे लोगों को जो है कमजोर करने के लिए, उनको स्मार्ट बनाने के लिए, कमजोर करने के लिए स्मार्ट बनाने के लिए, स्लिम स्मार्ट बनाने के लिए वेट कम पेट कम दी, जिसको आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, भरपूर तरीके से, उसकी सेल के अंदर कोई कमी नहीं है और दिन ब दिन उसके कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोग प्यारे होते जा रहे हैं, उनका पेट कम हो रहा है, उनका पेट अंदर जा रहा है, ठीक है जनाब। एक भाई हमारे पास आते हैं केसन शॉप पर, यकीन कीजिए वो एक हाई फाई फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो कहते हैं भाई मैं ना ब्रांड की शर्ट्स यूज करता हूँ, तो मेरी एक एक शर्ट जो है ना 5,000-5,000 रुपए की है, तो जैसे मेरा पेट निकला तो मुझे इतना सदमा हुआ। एक तो ये सदमा था कि भाई अब जो है वो पेंट शर्ट पहनना मुनासिब सा लगता है, पेट की तोंद आगे निकली होती है। दूसरा ये गम था कि भाई मेरे इतने हजार रुपए भी तो जाया हो गए ना, इतनी महंगी महंगी मेरी शर्टें थी। तो जब उसने हमारी वेट कम पेट कम यूज की तो माशाल्लाह उसका पेट अंदर चला गया, चर्बी पिघल गई और उसको वही शर्टें आना शुरू हो गई। तो वो जो है हमारे लिए ट्रीट भी लेकर आया कि भाई आप लोगों की प्रोडक्ट ने मेरा इतना बड़ा खर्चा बचा दिया, मेरी 50,000 की 40,000 की शर्टें ऐसे जाया हो गई थी, पेट बड़ा होने की वजह से फिर से आना शुरू हो गया। तो उस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी के बाद आप लोगों ने डिमांड की थी कि भाई वजन बढ़ाने वाली, यानी कि वेट गेन फार्मूला, वो हमारा वेट लॉस फार्मूला है। केसन का जो वेट कम पेट कम है वो हमारा जो है वो वेट गेन फार्मूला, वेट लॉस फार्मूला है, ठीक है जनाब। और अभी जो प्रोडक्ट हमने आप लोगों के लिए तैयार कर लिया है वो है वेट गेन फार्मूला, ठीक है जनाब। लेकिन हर कंपनी अपने इस फार्मूले का नाम रखती है, तो हमारा जो वेट गेन फार्मूला आ गया है, जो कल से आपको इंशाल्लाह आपके शहरों के अंदर जो है मिलना शुरू हो जाएगा, कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, उसका नाम है केसन, केसन ताकत प्लस, ठीक है ना। आइए मिलकर इस ट्रैक को देखते हैं, सुनते हैं कि केसन की इस प्रोडक्ट के जिसका नाम है केसन ताकत प्लस, जो कि वेट गेन फार्मूला है, आखिर ये है क्या।

0: कमजोरी को कर दो बाय बाय। केसन ताकत प्लस।
1: जी जनाब, केसन ताकत प्लस ये हमारा हर्बल सप्लीमेंट है, हर्बल फार्मूला है जो कि पाउडर की सूरत में होगा। ठीक है जनाब, आपको इनिशियली हमने इसका छोटा जार लॉन्च किया है, लेकिन ये जिस मकसद के लिए है ना जनाब, उसके लिए ये एक जार काफी नहीं होना। जिसको कमजोरी है, जिस्मानी कमजोरी है या आसाबी कमजोरी है, ठीक है जनाब, ये दोनों के लिए काम करता है और मर्द और ख्वातीन दोनों के लिए है और बूढ़े लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि 12 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उससे लेकर ऑनवर्ड जितने भी हैं, चाहे 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, इसको इस्तेमाल करेंगे। और ये जो केसन ने आप लोगों के लिए ये फार्मूला बनाया है, केसन ताकत प्लस, आप यकीन करें अल्लाह को जान देनी है, मैं आज दो दफा इसको पी चुका हूँ। दो दफा मैं इसको पी चुका हूँ। पहले मैंने इसको ट्राई किया, मैंने कहा इसका टेस्ट डेफिनेटली जो है देखना चाहिए कि टेस्ट इसका किस तरीके से है। तो इसका वनीला फ्लेवर है भाई, ओह माय गॉड, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप कोई मिल्क शेक पी रहे हैं। ठीक है ना, दवाई आपको लगेगी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और यही वजह है कि कोई दवाई को भी दो दफा पीता है भाई, मैं दो दफा पी के आज बैठा हुआ हूँ। ठीक है जनाब, और दिल कर रहा है कि मैं तीसरा गिलास भी पी लूं। इसको बेसिकली दो चम्मच आपने एक गिलास दूध के अंदर या आधा गिलास करेंगे तो गाढ़ा बन जाएगा, पूरा गिलास करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर दो चम्मच आपने डालने हैं, उसको मिक्स करके इसके अंदर ये नॉर्मल सा मीठा भी इसके अंदर है। ठीक है जनाब, नॉर्मल सा मीठा, और टेस्ट इसका बहुत प्लेटेबल है। इलायची की खुशबू इसके अंदर, इलायची मौजूद है जो कि आपके मैदे के इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, इसके जो हमने सैंपल लोगों को दिए थे ना, जिन जिन लोगों को, बहनें हमारी सुन रही होंगी डेयर रसमल खान में, जिनको हमने ट्रायल दिए थे कि आप ट्राई करें इसको, एक महीना खाएं कैसा लगा, तो सब ने, सब जिन जिनको भी हमने दिए थे ना, वो सब के सब अभी ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं कि हमें 5 पैक चाहिए। और रोजाना मैसेज आ रहा होता है, भाई कब आ रहा है आपका वेट गेन फार्मूला, कब आ रहा है वेट गेन फार्मूला, कब आ रहा है वेट गेन फार्मूला, हमें चाहिए, मेरी कजनों को चाहिए। अब मैंने खुद इस्तेमाल किया, उसके इतने अच्छे रिजल्ट आए, मैं उन फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आज पहला जो है इसका 1.5 चम्मच दूध के अंदर मिक्स करके पिया है। ओ माय गॉड, मजा आ गया, यकीन करें जितना प्लेटेबल टेस्ट है। अब उसके इसके जो मगजियात हैं

एक पार्ट इसका जो है उन जड़ी बूटियों के ऊपर मुश्तमिल है जो जमाने कदीम से ताकत का खजाना है, जैसे अश्वगंधा है, जैसे कि सफेद मूसली है, जैसे कि सतावर है, ठीक है ना। अब ये तीन जड़ी बूटियां किसी हकीम के सामने नाम लेंगे ना, वो कहेगा तुम्हें बताया किसने है ये राज हमारा, किसने निकाला है बाहर। पहले तो हकीम पूछेगा भाई ये आपको बताया किसने है, ये राज किसने आपको, ताकत का राज किसने आपको बता दिया। तो आपने बोलना है केसन वाले भाई, हमारी केसन फैमिली तो फैमिली है, कहां चीजें छुपाते हैं। तो ये तीसरा दूसरा पार्ट जो इसका है वो इन जबरदस्त किस्म की ताकतवर जड़ी बूटियों जो कि बहुत ही महंगी होती हैं, बहुत ही महंगी ये जड़ी बूटियां हैं जिनको हमने इसके अंदर मगजियात के साथ ऐड किया है। और इसका तीसरा पार्ट आपके हाजमे के हवाले से है, जैसे कि सौंफ है, जैसे कि इसके अंदर इलायची है, ठीक है जनाब, जैसे कि अदर इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपके मैदे के हाजमे को भी सेट रखेंगी। तो तीन हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल ये ताकत प्लस हमारा फार्मूला है। अच्छा, मुझे अभी खबर मिली है कि डेरा इस्माइल खान में जो है आज यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है ग्लोबल एफएम 91 के ऊपर, और लोग जो है आज उनका एफएम बंद है 91 के, मुझे अभी मैसेज आया कि वो नहीं सुन पा रहे और ये अगले दो तीन दिन बंद रहेगा। लेकिन अब आज कल परसों का दिन हो सकता है, जैसे हमें इन्फॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली हमारा शो भी ऑन एयर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो प्रोडक्ट है हमारी ताकत, ताकत प्लस इसका नाम है केसन ताकत प्लस वेट गेन फार्मूला, ये आपका वजन बढ़ाएगा, ठीक है जनाब। और वजन जब बढ़ता है समीन इकराम तो उसके लिए टाइम गेनिंग होता है, टाइम लगता है, इस तरह नहीं होता एक दो दिन के अंदर। तो इसे कम अज कम आपने 3 माह तक इस्तेमाल करना है, 3 माह तक, ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें अब कुछ चीजें आपको, आप जैसे इस्तेमाल करेंगे इसलिए हमने इसका भी छोटा पैक लॉन्च किया है। ये बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट बननी है, ये सेहत देने वाली प्रोडक्ट है, ये ताकत देने वाली प्रोडक्ट है। जिस तरह हमारी अदर प्रोडक्ट कितनी कामयाब हैं, हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट से हमारी हेल्थ की प्रोडक्ट कामयाब हैं बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि हमारा शिफाय दर्द ऑयल है, जैसे हमारी वेट कम पेट कम है, जैसे हमारा हाजमा कंट्रोल है। तो हेल्थ सेगमेंट के अंदर ये हमारी चौथी प्रोडक्ट आ रही है, चौथी प्रोडक्ट आ गई है जिसका ताल्लुक आपके जिस्म को भरने से है। अब जिस्म दो तरीकों से भरता है सामीन इकराम, एक तो बहुत ज्यादा आपके जिस्म के ऊपर चर्बी आ जाए ना तो भी आपका जिस्म भर जाता है, जिसे हम कहते हैं कि मोटापा हो गया है। दूसरा जिस्म भरना होता है आपके मसल से, आपके गोश्त से। तो ये जो फार्मूला है ताकत प्लस फार्मूला केसन का, ये बेसिकली जो है ये आपके जिस्म के ऊपर गोश्त चढ़ाने वाला फार्मूला है। इसके अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो आपके जिस्म के ऊपर चर्बी नहीं गोश्त लेकर आएंगी, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। ये बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं ना उनके लिए बहुत ही सुपर फार्मूला है भाई। अगर आपके जानने वाले कोई बॉडी बिल्डिंग जिम जाते हैं तो उनको बताएं ये सप्लीमेंट यूज करें, बहुत जल्दी उनके डोले बन जाएंगे, बहुत जल्दी, ठीक है जनाब। ये मसल बिल्ड करने वाला फार्मूला है, ये पट्ठों को, ये मसल्स को बनाने वाला फार्मूला है जो हमने आपको ताकत प्लस की सूरत में दिया है, बहुत ही अमेजिंग। और जो कीमत हमने इसकी रखी है, अल्लाह ताला हमारा एक यकीन है कि जब आप एक जायज मुनाफे के साथ चलते हैं तो अल्लाह पाक की तरफ से भी बरकत होती है और चीजें दुगना तिगना बिकना शुरू हो जाती हैं। और आप यकदम से अगर एक चीज के ऊपर 100 कमाना चाहते हैं तो वो बाजू का आपकी 4 बिकना शुरू हो जाती हैं, तो एक से भी बढ़कर। तो बहुत ही रिजनेबल रेट के अंदर हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च की है, जिस्म को ताकत देने वाली प्रोडक्ट, इससे सस्ती आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप पूरे बाजार छाने, आप मेडिकल स्टोर पर जाएं, आप पजारी के पास जाएं, ये जो ताकत प्लस फार्मूला है हम आपको दे रहे हैं सिर्फ 500 रुपए के अंदर इसका जार है, छोटा जार है इसका जनाब, ठीक है जनाब। और इसको ये हमने छोटा इसलिए बनाया हुआ है कि ये चूंकि इसके अंदर चिकनाई वाली चीजें हैं, ठीक है जनाब, और आप जैसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जनाब। इसमें फिर बहुत सारी चीजें हैं जो साथ साथ में हम ऐड करते जाएंगे। अगर इस फार्मूले को लेने से, क्योंकि जो लोग कमजोर होते हैं ना उनके लिए ताकत वाला फार्मूला हजम करना बड़ा मसला होता है, ठीक है जनाब। ये जो हमने बीच में आप लोगों को ट्रायल दिए थे ना, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई भी थी, ठीक है जनाब। तो उन चीजों को हमने ओवरकम किया है, फार्मुलेशन को रीफार्मुलेट किया है, यानी कि उसमें अगर आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, ताकत प्लस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए भूख अगर आपको नहीं

बहुत, क्योंकि इसके अंदर बहुत ताकत वाली चीजें हैं। तो बाजू का तो कहते हैं सराकी क्या दिन हाँ मलीच वेंद है जी, हाँ मलीच वेंद है भाई की शायद खावन डाल खावन तो भाई की शायद दिल ही नहीं आती। तो जब और चीज नहीं खाएंगे तो फिर सेहत कैसे बनेंगे। ये फार्मूला ताकत प्लस फार्मूला जो है ये तो आपके मसल बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ खुराक भी खाना अच्छी बहुत जरूरी है ना, डबल फायदा होगा। तो उसका एक सोल्यूशन ये है, पहले तो आप इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है आप इजीली इसको ले सकेंगे दूध के साथ आधे कप के साथ, ठीक है, या फिर आप इसके खुराक को कम भी कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि आप इसकी 2 चम्मच जो है इस्तेमाल करें, हम कहते हैं कि 1 गिलास के अंदर 2 चम्मच इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप तो बहुत कमजोर हैं, हैं जी सिंगल पसली हैं, तो इतनी हैवी डोज आप नहीं ले सकते, तो आप स्टार्ट करें 1 चम्मच आधे गिलास के अंदर, आधे गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच मिक्स करके आप इस्तेमाल करें स्टार्ट। पहले 1-2 दिन स्टार्ट इस तरीके से लें, ठीक है जनाब, आधा गिलास लें दूध का और उसके अंदर 1 चम्मच डाल के मिक्स करके इस्तेमाल करें। 2-3 दिन खा के देख लें, अगर आप सही आपका मैदा इसको हजम कर रहा है तो फिर आप इसकी जो एक्चुअल डोज है उसी डोज के ऊपर आ जाएं। अब इसके 2 तरीकेकार हैं, आप इसे सुबह शाम भी ले सकते हैं। अगर आपका हाजमा सेट है, आप 2 चम्मच खाने से पहले, 2 चम्मच हाजमे यानी कि नाश्ते से पहले, और 2 चम्मच आप रात को खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसके अंदर जो जड़ी बूटियां मौजूद हैं सामने,

0: कमजोरी को कर दो बाय बाय। केसन ताकत प्लस।
1: जी केसन ताकत प्लस, तो आप इस रूटीन के मुताबिक कर सकते हैं। मुख्तलिफ आप अपने हाजमे के मुताबिक इस हमारे सप्लीमेंट को यूज करें। पहले एक चम्मच से यूज करें, ठीक है, दो तीन दिन खा के देख लें आपका हाजमा सही काम कर रहा है, आपको भूख सही लग रही है, जिस्म के अंदर ताकत आ रही है, फिर आप चले जाएं जनाब दो चम्मच तक। एक गिलास दूध के अंदर दो चम्मच आपने डाले हैं, मिक्स करना है। अच्छा, इसके और बहुत सारे फायदे हैं, 13 अज़ा इसके अंदर मौजूद हैं। मैं कहता हूं कि जो मेरे पास फायदों की लिस्ट आई हुई है ताकत प्लस की, मैं तो पूरा हफ्ता इसी के ऊपर प्रोग्राम करूंगा, जितने फायदे हैं। खवातीन के लिए एक नेमत हमने लॉन्च कर दी है, खवातीन इसे यूज करेंगी तो उनके बहुत सारे मसाइल जो हल होंगे और उनको एक जबरदस्त जिसम, जबरदस्त सेहत इंजॉय करने को मिलेगी। ऐसे लोग जनाब जिनको नींद का इशू है, जिनको नींद नहीं आती है, इसको रात को सोते वक्त जब आप लेंगे तो बहुत ही जबरदस्त और मीठी किस्म की आपको नींद आने वाली है, ठीक है जनाब। अच्छा, कुछ लोग अगर आपको ये ताकत प्लस फार्मूला लेते हुए भूख नहीं लग रही तो फिर दूसरा वे ये है कि आपने हाजमा कंट्रोल सिर्फ साथ में इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, क्योंकि हाजमा कंट्रोल एपेटाइजर का काम करता है और आपके भूख लगाने का काम करता है। तो अगर इस फार्मूले के साथ आपकी भूख, आप ये समझते हैं कि आपको भूख नहीं लग रही, तो फिर आपने हाजमा कंट्रोल सिरप जरूर साथ में इस्तेमाल करना है। लेकिन पहले नहीं, पहले आप इसको लें, इसलिए हमने इसका ट्रायल पैक बनाया है, छोटा जार बनाया है। उसके बाद जैसे यूज तो आप हो जाएंगे, आप लोगों के सारे जो है तजावीज हमारे सामने आ चुकी होंगी, आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर चुके होंगे, तो इसका बड़ा पैक जरूर इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। और क्योंकि बड़ा पैक ही इस मर्ज की इलाज है कि लॉन्ग टर्म में आप यूज कर सके। एक कॉलर हमारे साथ है और इन्हें मौका दे रहे हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। खलील भाई के हाल है? ठीक ठाक सब कुछ पहले तो
1: जी जनाब,
2: तो आपको नवी प्रोडक्शन दे उते मुबारकबाद दिल दी गहराइया कुल्ले सो जी।
1: खैर मुबारक, खैर मुबारक सही ते बहु मेहरबानी नवाजिश। पहले पहले कॉलर तो साहेबे ते इसी गाल दे उते सही पहला पहला गिफ्ट सारे तरफ तुहाडे वास्ते ताकत प्लस तुसा सही बगैर पैसा दे इस्तेमाल करो। सो पहले सारे लिसनर समझ आइए सही
2: सर,
1: मैं के सही तुसा पहले सारे कॉलर इवे जैसा को सारे प्रोडक्ट देते मुबारकबाद दीती है, ता इंशाल्लाह पहला पहला सारा जरा ताकत प्लस ए सारा जा रहे तुम्हारी तरफ मुफ्त, पहला गिफ्ट तुम्हारी तरफ वेंदा पिया।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर, जजाकला। ते मैं तो पैसा नाल जिना दा कल तो फोन किता ही को 3-4 हज़ार 5 मतलब आधा दर्जन।
1: बिल्कुल, बस पहला जार तो तुसा मुफ्त पियो सही वासा को मजा क्या था इन रिजल्ट के, बल्कि इन पहले पहले जिले यूज करे सो तो साको इन टेस्ट ही दिसा है, इन मजा ही दिसा है, तो वातों दे बाद जिले अपने रोजाना इस्तेमाल करे सो तो वात इन असरात अपने जिस्म ते भी साको दिसा है कि कितनी ताकत भरी तुम्हारी जिंदगी हूं थी गई है पहले कुछ ज्यादा है जी।
2: इंशाल्लाह साहब को कोई शक शुबा को नहीं और लिसनर को नहीं करना चाहिए, सब पहले थोड़े बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अजमाई खड़े होंगे दे रिजल्ट अल्लाह ताला दी करम फजल नाल थोड़ी प्रोडक्शन दे फलूस नाल मेहनत नाल
1: अपने इलाके बहुत ज्यादा मशहूर किया है, बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल भी करवाया है कि एक दफा मेरा ख्याल है कि 15,000 सिर्फ वेट कम पेट कम। तो हुण कुछ ऐसे खवातीन भी हो सन जिन्हों को ई फार्मूले की भी जरूरत हो सी सही।
2: बिल्कुल, इन कमजोर लोग हर घर के मौजूद नहीं थे, उन्होंने सब पहले को लाता है 2 महीना तरह को फोन दिया ने थोड़ियां लेक्चर था, शुक्रिया सब खुशी थे इस वास्ते मुबारक दी थी से नाल परचेस करे सो के लिसनर सारा को बहुत बहुत सलाम देनी बिरामा को शबीर भाई शबरा सर के ग्यारह जगह पूर एम बी साहब शहराज आनी सर जितने दोस्त बिराए नूना सेठ से
1: जनाब नजर हसन कच्ची काटगढ़ से हमारे साथ मौजूद थे। मैंने ये सोचा हुआ था कि पहला जो कॉलर आएगा ना उसके लिए ये मुफ्त में अनाउंस करूंगा, ठीक है ना। अब देखेंगे कि टांग से हमें कौन ज्वाइन करता है। और ये प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये नहीं है कि उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, बल्कि असाबी तौर पर जो लोग जो है बूढ़े हैं या उनको कमज़ोरी महसूस होती है, 50 के प्लस जो है बंदा जो है 50 साल की उम्र के बाद फिट नहीं रहता है, जिस तरह हम शिफा दर्द का आपको बोलते हैं कि आपको दर्द से जो है छुटकारा देता है, तो उसी तरीके से ये बहुत प्यारी प्रोडक्ट है, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ठीक है ना, न्यूट्री सप्लीमेंट है। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम खलील भाई, की हाल है, खैर खैरियत पे?
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन इंसान अल फैजान इन सही फैजान भाई?
2: जी आप फैजान शेख गरे तो गाल करें हैं,
1: शेख दे गरे को गाल करें हैं। जी फैजान भाई की हाल है, ठीक ठाक?
2: माशाल्लाह खैर है, मैं अल खलील भाई सवाल करे है।
1: अच्छा जी ठीक है, प्रोग्राम सुनते बैठे वैसा रहा तुसा?
2: हाँ प्रोग्राम माशाल्लाह सुनने पे, प्रोग्राम जबरदस्त प्रोग्राम है।
1: आज नवी शे ऐसा ही तो को दसी है, केरी शे दसी है, जरा दस सकते हो ऐसा नवी शे बढ़ाई है आज?
2: लंबर
1: नहीं, नवी शे बढ़ाई है, ऐसा नवी प्रोडक्ट बढ़ाई है, केरी दसी है मैं तो कोई याद है तो को?
2: नई प्रोडक्ट खरीद भाई।
1: हाँ आज जरी तो दसें दे बैठे हैं, केरी प्रोडक्ट जरी नवी बढ़ाई से?
2: प्रोडक्ट बा हम जरबत खान जी को प्रोडक्ट अखिस्तल करे कना
1: है। जरबत खान को तो वैसे हो तो सा, लेकिन मैं को ये दसो जो आज ऐसा तो को केरी प्रोडक्ट के बारे दसें दे बैठे हैं कि नवी प्रोडक्ट ऐसा बड़ा छोड़ी तुम्हारे वास्ते?
2: प्रोडक्ट
1: इस्तेमाल नहीं करे
2: खलील भाई।
1: यार चलो ठीक है फैजान भाई, मैं आके आज प्रोडक्ट बारे तो मैं दसा एक ऐसी नवी ताकत ली एक शह बढ़ाई है, तो समझ नहीं आई हुंदी?
2: मैं तो समझ नहीं आने कतर कतर समझ आने कने मैं देर ना पूई हूँ।
1: देर ना पूई हूँ, चलो ठीक है, सलाम दो अपने दोस्तों को जल्दी से फिर फैजान।
2: अब्दुल हादी को सलाम, सलीम कटी खेल को सलाम, वली रहमान को रमान को सलाम। मैं के मैं क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करे करा अगर बताने जी को मैं वैन है।
1: हाँ बिल्कुल उन्दे को वैन है, ते बात उन्दे को घिन है, ठीक है सही।
2: हाँ तेर प्रोडक्ट मैं आखलम करा।
1: हाँ हाँ
2: हाँ तावा इंशाल्लाह मैं को प्रोडक्ट मैं को रिजल्ट मिल रहा है करा।
1: गुंजाइश नो सी इंशाल्लाह, ठीक है फैजान भाई। हाँ शैम्पू तो मैम्पू ही है, तो ना शैम्पू भी है, दुआ हिन
2: शैम्पू कैरा शैम्पू है ना माम तो है कनी है
1: वो कहा को खलील वाला शैम्पू केसन शैम्पू जनाब बहुत शुक्रिया प्यारे से बंदे, प्यारे से हमारे लिसनर फैजान भाई हैं, मोहब्बत इनकी बेताश है हमारे साथ, लेकिन ये और बात है कि मुझे पश्तो नहीं आती और उनको कतरा कतरा जो है वो सराकी आती है। अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुल्ला जी ठीक ठाक, कौन इंसारे नाल ना से सोपना सही सादे कली छीने को लेने पे सादिक भाई की हाल है, चंगे वदे वे ठीक ठाक? तुम्हारे जिसम दी सूरत हाल के है, तो आपको कहके वाले कमजोरी महसूस थी दिए चक्कर शक्कर आने तो आपको या मुकम्मल तौर ते फिट ही वे? सिर्फ एक केसन दा ताकत प्लस एक जार चा के डब्बी चा के अपने नाल वधे रहा करो, खीर डो के फौरन मिक्स करके एक चम्मच पी के करो, ताकत ही ताकत है सही।
3: بالکل ہے تو ہم جو نصیحت میں تے یہ بولے نا طلب کی نے تم دکھئیے جھوٹ تو میں فورن گھنوں
1: تو سے فورن گھنو تے تسا میں کو یقین کرو تسا میں کو دو دیاں دے وچ دا رزلٹ رسو کہ یار خلیل بھائی ایدی پیاری شے اتنی دیر تے کیوں گھن کے آئے وے سارے واسطے
3: سیرپ
1: سیرپ صحیح جتنے بھی وٹامنز ہوندے نا وٹامن بی فائیو وٹامن ای وٹامن ڈی کیلشیم نیاسین لائسوویٹ لائسین وہ سارے شیاں قدرتی طور تے اسا جڑا تہاڈے واسطے طاقت پلس فارمولا بنائے نے ایندے وچ موجود ہیں ٹھیک ہے صحیح تا تسا ایویں کرے سو کہ سٹارٹ دے وچ ایک چمچ ایک گلاس دے وچ مکس کر کے پیسو
3: جی
1: ٹھیک ہے صحیح اون دے بعد ایک دو دی وارا جویں دیکھ کے نے کہ ہاضمہ صحیح کام کرندا پیا کوئی بوجھ وغیرہ نہیں آندا پیا تو اون دے بعد وقت دو چمچ ایک گلاس دے وچ مکس کر کے استعمال کرے سو تے انشاءاللہ ڈیاں ڈیاں دے وچ جسم ہی تہاڈا بھر سی ٹھیک ہے بھری سی تے تو کو جسمانی کمزوری تھکاوٹ سستی او وی سب سے ختم تھی ویسی طاقت پلس فارمولے نال
3: جی اے دو لوکاں کو اے مسئلہ ہی کمزوری والے تنگے تساں نک کٹے وی دینا اے بڑا مزے دا اے
1: یقین کرو اے مرد حضرات جڑے نا اساں بیسیکلی بڑھایا تا کمزور بچیاں واسطے ہے لڑکیاں واسطے ہے جڑے کہ کمزور جسم انہاں دا ہوندا ہے لیکن اے اتنا کامیاب فارمولا ہے اندی جڑے یونانی قسم دی جڑی بوٹیاں اشواگندھا ٹھیک ہے جناب سفید موسلی ستاور وغیرہ کو شامل کیتا گیا او بھائی امیزنگ قسم دا کام کرن مرد واسطے تے جلے تساں کو استعمال کرے سو تو واقعی تساں آکھ سو کہ یار ایک تے جان آ گئی سارے جسم دے وچ ہیں جی اتنے طاقتور فرمان جی
3: جتنے مسئلے تے جسے سارے میرے اندر
1: موجود ہیں بس تو کو تا اشد ضرورت ہے تے جویں کل انشاءاللہ اے ٹانک وچ پہنچے تے تساں اوندے کول پہلے پہنچے کھڑے ہو تے تہاڈی بریک پہلے کو لگی کھڑی ہوے ٹھیک ہے صحیح مال تھوڑا ہے تے ڈیمانڈ زیادہ ہے تے کل انشاءاللہ امید ہے کہ دو ترے دے بعد تسا ضرورت خان کو پتہ کرے سو تا ایک سن طاقت طاقت پلس فارمولا جی رہے انشاءاللہ تا موجود ہو سی ٹھیک ہے صحیح ضرورت ہے جناب طاقت ایسے فارمولے کی جو جسمانی اور اعصابی کمزوری کو طاقت سے بھر دے اور آپ کی زندگی جوش سے بھرپور ہونی چاہیے زندگی وہی ہے جس کے اندر جوش ہے جذبہ ہے ولولہ ہے توانائی ہے

0: से भरपूर कमजोरी को जो करे दूर।
1: हाँ जनाब, हर दिन जोश से भरपूर कमजोरी को जो करे दूर, वो है केसन का ताकत, ताकत प्लस फार्मूला। जी अस्सलाम वालेकुम, शबीर उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं केई से, वेलकम करेंगे इनको जनाब अपने प्रोग्राम में।
2: वालेकुम सलाम खलील भाई, खैर खैरियत है? प्रोग्राम माल चाहिए कुछ
1: अच्छा, मौसम अच्छा। जी बिल्कुल, मौसम अच्छा थी कि माशाल्लाह लाहौर बारिश थी, बड़ी शदीद किस्म की बारिश है लाहौर दे विच, तो बारिश सही लाहौर बहुत मूसलाधार बारिश है। ठीक है जी, बहुत सारी ट्रैफिक डिस्टर्ब है, रोडां दे पानी जमा थी गए। मैं हुण खबर पढ़दा पिया थोड़ी देर पहले शो को पहले, तो उन असरात पर पूरे मुल्क होने बारिश जिले थी वजे ते इंशाल्लाह मौसम चंगा थी। वैसे उए असा तो को पेशन गोई की थी बैठे हैं कि मंगल को मौसम चंगा होसी, ते बुध जुमरात इंशाल्लाह सारे पासे भी बारिश होसन ते आंधी होसी, तो मौसम अच्छा थी। वैसे एक आज तारीख ही नहीं है साडे वास्ते, केसन दे वास्ते एक नवी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह
2: जरूरत है, लेकिन इसको वजन को वेट कम पेट कम कम करेंदा है, मोटापा है, जितने भी यो करेंगे मोटे नहीं थी, तो ये उसको ताकत बीमार और हर शहर जितनी बीमारी इंसान किस्म किस्म कमजोरियां तो जरा हर शहर फार्मूला तो मैं मुबारकबाद बड़ा जबरदस्त एक फार्मूला और हर एक फायदा दे थी इनशाला, तो एक भी इजाफा थी जो आसान हर बंदा
1: बिल्कुल अच्छा। मैं तुम्हारी उम्र मेरे ख्याल 55 साल है जी?
2: जी
1: पचपन छप्पन है, तो वास्ते एक आइडिया ले तुसा सौ आखो ना कि भाई तुम्हारी गिजा अच्छी है या ए है, लेकिन वत भी तो को जरूरत हो सी सही। ठीक है जनाब, क्योंकि उम्र दे नाल नाल जिस्मानी कमजोरी असाबी कमजोरी थी वेंदन, ए तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। ठीक है सही, लेकिन कुदरती अजा नाल ए तो को इनशाला सही पैक भेजने पे है सही। ठीक है सही, ताकत प्लस दूध तुम्हारे अपने घर का उसी, तो बस तुसा इनशाला कुछ ना इस्तेमाल करना है, ते वात इस्तेमाल करके तुसा सबको दसना है, डब्बी पूरी खत्म करनी है तुसा। पहले तो सबको दसो कि भाई कोई इस्तेमाल करने के बाद मैदा ठीक रही है। ठीक है जनाब, एक जबरदस्त टेस्ट है, वो एक स्टार्ट गालियन, लेकिन असल गाल है कि तुमको इन्हें कितनी ताकत पुरजोश तुमको बढ़ा दिता है, ये इनशाला तुसा सबको दसो। तो इनशाला अजकल जिम्मे तुरा कोई बंदा साढ़े केसन शॉप से आंदा वह हो तो जरूर ना इन्फॉर्म करे सो, तो सारी तरफ ए दूजा गिफ्ट पहले नजर असन ते अगेन हुन तुहाडे वास्ते। ठीक है सही,
2: शुक्रिया वाला पर तेरी कंपनी कामयाब करे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करे सा ये कोई देश हुन सारे नजर इच होने, ये थोड़ी कमजोरी के इलाज मोल जो कार कार पे लेकिन वाती कमजोर रानी, तो इंशाल्लाह की सकदा है जो मैं खुद इस्तेमाल करके उदा ए रिजल्ट ही ठाकु दे छु
1: इंशाल्लाह,
2: मैं कुछ को इंशाल्लाह दे सा कोई अगर मैं को
1: बुजुर्ग औरत मर्द इस्तेमाल करें ताकि एक एनर्जी महसूस करें, इनशाला बहुत मेहरबानी सही, शुक्रिया।
2: ओके
1: जनाब, सब सुनने वाले।

0: लेकिन अब जिस्म में नई जान आएगी जब आप केसन का ताकत प्लस यूज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या भाई, चंगा बता, तबीयत ठीक है?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब बिल्कुल चंगे बते थे। आवाज तो मैं को टांग वाले पास दी लगती पई है।
1: ए नोनी कोल गाल करे ना पी अख्तर जमान गंडापुर।
0: अख्तर जमान गंडापुर बिरा को अस अपने प्रोग्राम जी तो खुश आमदीद आक्सो। पहली दफा आए सारे प्रोग्राम में चाहिए तुसा? अच्छा, तुम्हारे पास आवाज सारी नहीं आती एफएम दी? आवाज
1: तुम्हारी
0: घंटी पहुंच गई है सारो, ठीक है सही।
1: फैजान को सलाम
0: दे, फैजान को सलीम कटी खेल को भी सलाम पहुंच गया।
2: हर दिन खुशी।
0: केसन ताकत प्लस एक फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, न्यूट्री सप्लीमेंट, सपोर्टिंग सप्लीमेंट आप लोगों के लिए हमने ये बनाया है जनाब। पाउडर फॉर्म में है, बहुत ही प्लेटेबल। मैं आपको कहता हूँ कि पहला दिन है, मुझे तो जरूरत भी नहीं है इस फार्मूले की, लेकिन इसकी जायके की वजह से मैं 2 गिलास दूध के पी चुका हूँ। यकीन करें 2 गिलास नहीं बल्कि 3 गिलास मैं दूध के पी चुका हूं, और सिर्फ इसी को मिक्स करके इसी का मजा लेने के लिए कि यार कितना खुश जायका, ये हमारा ताकत देने वाला फॉर्मूला है। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, हाल सुना के खलील भाई, चंगे होते हैं?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सलीम कटी खेल मोहम्मद अली कल है गड़ा बुढ़ा कोल जी जिस्मानी कमजोरी है सही?
1: जी बिल्कुल है।
0: बस बात सही, तुम कल इवें करो जो ही कली कोच दोते ना टांक पहुंचो, ठीक है सही?
1: हाँ जी जी।
0: हाँ तो इंशाल्लाह कल ही कल ताकत प्लस फार्मूला केसन का इस्तेमाल करो, घिन वजो घर, ठीक है सही? ते इंशाल्लाह ही का डबी केज दू दिवारा इस्तेमाल करे सो तो ताको महसूस थी कि तुम्हारे जिसम कुछ हरकत करन लग गई है सही, ताकत आ गई है, एनर्जी आ गई है, जोश आ गया, वलवला तवनाई आ गई है। हाजी जरबत खान को इंशाल्लाह कल 2 बजे बाद कोशिश होसी के ना तो पहुंच वंजे गड़ी घिन वंजे ते तो कल को तो मिलन शुरू थी वंजे, ठीक है सही?
1: अच्छा सारा स्पेशल दुआ सलाम देवे को फारपोड़ी नुमान बिरा को,
0: नुमान शेख बिरा को।
1: या नुमान शेख बिरा,
0: ठीक है सही, ठीक है। तो अरे सलाम
1: अब्दुल हादी को,
0: ठीक है जी अब्दुल हादी
1: को, सलीम कटी खेल को, जेरे तेरे प्रोग्राम छोड़ दे पाए सारा को दुआ सलाम तेरे स्पेशल बना।
0: बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो वेरी मच। केसन का ताकत देने वाला फार्मूला आ गया है भाई, आप लोगों को प्यारा हमने बनाया अपनी क्रीमों से, अपने फेस वाशों से, अपने साबुनों से, आपकी चर्बी को पिघलाया हमने वेट कम पेट कम से, आपके पुराने से पुराने दर्दों को खत्म किया हमने केसन शिफाए दर्द से। जनाब इस बार हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए ताकत से भरपूर के जिसके अंदर है जनाब बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू। काजू किसी ने खाया है कभी? बहुत महंगे होते हैं पिस्ता, काजू, बादाम, ये चीजें गरीब की बस की बात नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से हमने आप लोगों को शुतुरमुर्ग का तेल, पहले अमीर तरीन लोग इस्तेमाल करते थे, गरीब लोगों की पहुंच में नहीं था, अब भी वो गरीब लोगों की पहुंच में नहीं है। कंपनियों का 2-2 हजार का है और हमने आप लोगों को 700-800 रुपए का दिया हुआ है। एक म्यारी चीज हम आपको देते हैं और अब इस बार जो ताकत से भरपूर हमने आपको ये फार्मूला दिया है, आप यकीन कीजिए चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सुस्ती भी खत्म, उसकी आपकी नकाहत भी खत्म, आपकी काहली भी खत्म, चुस्ती से जनाब काम करते जाएंगे, ना ही हर वक्त सोना होगा, ना ही खाबे खरगोश के मजे लेने होंगे, ना ही आप हर वक्त जो है घर वालों के ऊपर बोझ होंगे कि जनाब हर वक्त चारपाई और इसके साथ होता है। तो जनाब सुस्ती काहली नकाहत को खत्म करने वाली हमारी ये प्रोडक्ट केसन ताकत।

एप्लीकेशन ताकत प्लस प्राइस का कीमत का आप लोग सोच रहे होंगे, मैंने अभी तक नहीं बताया है, बताया या नहीं बताया? तो जनाब इसकी कीमत है, जो हमने छोटा जार बनाया है इसकी कीमत है 500 रुपये, ठीक है जनाब। ये 500 रुपये का एक जार है, और आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे दो वक्त में लेते हैं या एक वक्त में लेते हैं, ठीक है जनाब। और कितने दिन चलता है, क्योंकि स्पेसिफिक डोज नहीं है, एज पर मैन एज पर वुमेन के वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं, इस फार्मूले को इनटेक कर सकते हैं, इजीली जो है हजम कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक चम्मच और आधा आधा गिलास दूध से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है जनाब। आधा कप, आधा गिलास दूध का, नीम गरम हो या नाम भी हो कोई इशू नहीं है, सर्दियों में फिर इशू होता है, तो सर्दियों में नीम गरम कर लें, लेकिन आधा गिलास दूध के अंदर आप एक चम्मच डाल करके इसको इस्तेमाल करें, ठीक है जनाब। फिर उसके बाद आप इसकी खुराक को बढ़ाते जाएं, आप इसको इंक्रीज करते जाएं, दो चम्मच तक आप इसे कर सकते हैं, यानी कि दो चम्मच सुबह दूध के अंदर और दो चम्मच रात को दूध के अंदर मिक्स करके आप ले सकते हैं। जैसे कि आप किसी बीमारी से उठे हैं और कमज़ोरी है आपको बहुत ज़्यादा, तो उस सूरत हाल में भी आप इसको ले सकते हैं। 12 साल से ज़ायद उम्र के लोग जो है, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग एज है वो 12 साल है, और इसमें ही आप इस्तेमाल करेंगे। आपके मैसेजेस मुख्तसर से हमारे पास हैं, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। मोहम्मद हमजा केमटा जो है हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। सब लिसनर्स को मोहब्बत भरा सलाम कह रहे हैं, आवाज की दुनिया के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ के यूहिना गुलनूर, कैसे हैं, कैसे हैं आप और अदन, आपकी तबीयत अब कैसी है? अल्लाह आपको जल्द ही मुकम्मल तौर पर सेहत याब फरमाए, आमीन। न्यू प्रोडक्ट केसन ताकत प्लस की लॉन्चिंग पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह इस प्रोडक्ट को कामयाब करे, आमीन आमीन सुमा आमीन। और सर आप मुझे एक बात तो बताएं, क्या हम लिसनर्स आपको इतने बुरे लगते हैं कि आप हर दूसरे दिन इस शो के लिए न्यू आरजे ढूंढ रहे होते हैं? ठीक है, अच्छा नहीं, मैं आप लोगों के लिए कतन नहीं ढूंढ रहा, ये जो टांक वाले लोग हैं ना, टांक वाले लोग अक्सर हमें कहते हैं कि पश्तो का आरजे हो, तो ना मुझे डेरा में जरूरत है, ना मुझे पहाड़पुर में जरूरत है, ठीक है ना। अभी भी जिस आरजे से मैंने बात की है, तो उसको मैंने कहा है कि सिर्फ आपने टांक का प्रोग्राम करना है, ये दोनों प्रोग्राम जो है टांक डेरा का और पहाड़पुर का, ये मैं खुद ही करूँगा, ठीक है जनाब, ये मैं खुद ही करूँगा। वो ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि हम केसन को समझ सकते हैं पश्तो में अच्छे तरीके से, तो बेसिकली तो कंपनी का पैगाम समझाना है ना, बेसिकली तो हमने कंपनी का मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। अगर मेरी जुबान उसको सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रही, या पश्तो के लोग मुझसे, पठान लोग जो है वो मुझसे खुश नहीं है, और वो ये समझते हैं कि यार हमें उर्दू समझने में मुश्किल आती है, तो क्यों ना प्योर पश्तो का हो, तो मकसद ये है कि केसन का पैगाम जो है वो हर घर तक पहुंचे।

0: हर जुबान के लोगों तक पहुंचे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जो मेरी छोटी सी काविश है, जैसे कि तासीर को पहले, वो इधर से फिर हमसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा प्रोग्राम, और जो है आप मुझे यहाँ पर।
1: जिसमें आए नहीं जा।
0: जी जनाब, मोहम्मद फैजान टांक वाले को कहते हैं, वेलकम करते हैं हम, और इसकी सराइकी पर मैं हंस हंस के लेटा पड़ा। ये बहुत दिलचस्प और जबरदस्त काम का बंदा है, जैसे पहाड़पुर में मलंगी है, जिसकी हर बात पर बहुत मजाक करती है। लिसनर्स को बहुत बहुत सलाम, नजर हसन लाला सेकंड, हैप्पी न्यू। आपके प्रोग्राम के दौरान फिर मौसम जबरदस्त चेंज हो गया है, माशाल्लाह जी चेंज हो गया है, गर्मी खत्म, बादल हवा शुरू हो गई है। जी अब ये फजल करम अल्लाह ताला का हमारे इस घंटे में होता है, 4 बजे के घंटे में ही आप लोगों को अच्छी अच्छी खबरें मिलती हैं, मौसम की बेहतरी की खबरें। जनाब, तो जनाब ये हम था हमारा आज का प्रोग्राम, और हम पूरा हफ्ता डिबेट करते रहेंगे अपने इस न्यू प्रोडक्ट, न्यू लॉन्चिंग जो है हमारी केसन ताकत प्लस के नाम से हमने जो प्रोडक्ट बनाई है, आप लोगों की ढेर सारी, हमने बड़ी मेहनत की है इस प्रोडक्ट के ऊपर। आप यकीन कीजिए, पिछले 3 माह से 4 माह से हम लगे हुए हैं। पहले इस प्रोडक्ट के हमने सैंपल बना के लोगों को दिए,

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: Radio 88.4. Your station.

बिस्मिल्ला पढ़ के झोली पऊं सही बुक देवे या छज देवे। बिस्मिल्ला पढ़ के झोली पऊं सही बुक देवे या छज देवे। उंदी जात कुहिन अख्तियार सबे लुक छप देवे गज वज देवे। उंदे खादम हैं भईवाल निसे किवें आखूं कल याज देवे। सही जानेन सही दियां गई जानेन तुने बुख मारे भावें रज देवे। FM 88.4 अमन रेडियो की नशरियात के नाल तुहाडा मेज़बान द्वारा बेरा तुहाडा सेवक तौला बलोच तुहाकू अपने मन भावने प्रोग्राम दे विच खुश आमदीद आदे ते सही उम्मीद करेंदे जित जित आवाज़ वहिंदी पई होसी उंजा ते मुहब्बतां खुशियां ते प्यार होसी। यह FM 88.4 अमन रेडियो की आवाज़ ते इन प्रोग्राम को प्रोड्यूस करेंदे पैन साडे स्टेशन मैनेजर नाज़मान खटक साहब। सोने सजनों तू सारा ते सारा जरा रिश्ता है पांच बजे का छह बजे तक रासी इन दौरान असा गाल मुहाड़ भी करे सूँ गुफ्तगू भी सुन सूँ ते तुहाड़ी गाल भी सुन सूँ कुछ असापड़ी भी करे सूँ ते नाले नाले तुहाड़ियां टेलीफोन भी शामिल करे सूँ ते बाकी जरी कोई फरमाइश मुमकिन थी सकदी है वह भी करे सूँ ते तुसां ते असां जुड़े रासूँ छह बजे ताईं। सही गर्मी का मौसम है सावण का मौसम है तो सावण अपनी गर्मी का अरूज का जोबन होता है जहाँ बिच आदि के अगर मीह भी वसे खड़ा तो पगर वत भी उवें रवाना होता है क्योंकि सही अल्लाह पाक दी नेमत इन अल्लाह पाक दी हर नेमत का एक अलग मज़ा है और जेरा भी मौसम होवे उन्दे विच एक अपनी हिकमत है एक अपनी गनीमत है ते वत जेरा सावण का मौसम होंदा है ये बारिशों का भी मौसम होंदा है ये उम्मीदों का मौसम होंदा है। इन्दे विच तांगा होंदियां जमींदारां को किसानां को के इलाके आबाद थी से नौर अमूमन सारे जेरे वसेब दे जमींदार हैं हाड़ दे विच भन्नी नाली कर रखे दे त्रैपलो चला रखे दे ते वत जमीना दे लेवल मेवल भी कर रखे दे कोई लाणा बूटा होवे तो वही मार रखे दे जेरले सावण आंदा है तो सही बलड़े भरी दे कोई गट्टे भरे खड़े होवेन तो कोई नाले कंबेला मबेला ही बरेज खड़ दियान और उन्हें नाल माल दे नाल नाल जमीन ते चरिंद परिंद को भी पानी दी दस्तियाबी जेरी है ना उथींदी रहंदी है। अल्लाह सोने दी हिकमत है अल्लाह सोने दियां नेमतां जेरियां उसने अपने बंदे दे कीते पैदा कीतियां हैं और बंदा अगर साबिर ते शाकिर रहे तो वत उन्हें विच अल्लाह नेमत दा नेमुल बदल भी देंदा है।

भलो छा साल मां अच्छा सही एक ऐलान सुन गिनो साडे इलाके दे रिवायती दंगल जेरे कुश्तियां दिंदे रहंदे उन्हां दे हवाले दे नाल कि बड़ा खूबसूरत एक प्रोग्राम सजाया वेंदा पी है सही केरी दीवार 28 तारीख बरोजे मंगल गुलफाम चौक हथाला दे उते ते बड़ी खूबसूरत कुश्तियां होसन। अच्छा इंदे विच सब तो वड्डी जेरी कुश्ती है सही साडे इलाके दी नामवर कुश्ती है जैं दे विच रिजवान पहलवान कमर पुलाला ये एक खूबसूरत पहलवान है दाओ पेश दा माहिर है जैं दे आ मुकाबला उसी करंट पहलवान फैसलाबाद आले दे नाल जिहड़ा कि ना पाकिस्तान दा नामी ग्रामी एक पहलवान है ते इंदे नाल जिहड़ी आ साडी इलाके दी वड्डी कुश्ती है फखरे दामान फखरे मुहब्बत फखरे तहसील कुलाची डेरा इस्माइल खान दे नाल फखरे टांक इकराम पहलवान अलमारूफ नीला फखरे मुहब्बत उन्दी बेहतरीन कुश्ती है सही सरमत पहलवान न्यू कराची आले दे नाल गुलफाम चौके हथाला 28 तारीख इस महीने दी दीवार बनदी पई मंगल दी ठेकेदार इन सही इजवाज पहलवान ते मंदी मामा ते खूबसूरत प्रोग्राम उसी तुसा तीगर दे बाद पहुँच वंजना है और इलाके दी सकाफत जरिए इलाके दे रस्मो रिवाज इन खूबसूरत दंगाले सही और वड़े वड़े मेले भी करवेंदे रहंदे ठेकेदार इजाज पहलवान ते मंदी मामा ते उन्हां दा जड़ा मेला होए ते आवाम न वञे ते इंदे नाल नाल सारे टांग दे पहलवान मिठू दे पहलवान नाले नाले शादा मत्ता जमाल ममरेज आले इनू छीना आले इनू नोरंग आले गोले मारमा आले ते ओ पहलवान भी अपने दंगल दे विच हिस्सा गिनसन उवें आसिफ पहलवान बुलबुल फखरे मुहब्बत ओ भी होसी ते नाले नाले जेरे बै ओ टकवाड़े दे एक खूबसूरत पहलवान इन ओ भी होसन बस तुसा मनना है ते प्रोग्राम का लुत्फ अंदोज थीवना है।

0: बिल्कुल मैं मुलाजिम दुकानदार रणवाल दुकाल कहना पैना रणवाल जी का ना खबर है रणवाल दा ते परदेसिया मैं हूं बलूचिस्तान जो भी चुकाल करना पिया
1: एडे परे सही तूसा लगे गए वे
0: बिल्कुल ए गर्मी दी वजह को लगे गए जी
1: वाती ना मला भेजो ते नहर दे नाल पिया कि दाई
0: बस बारिश वर्दी खड़ी है।
1: अच्छा माशाल्लाह बलूचिस्तान लगे गए वे
0: जी जी हां
1: बलूचिस्तान केरे जिले च तरक्की कर गई है
0: बस अल्लाह की मेहरबानी है बस शुक्र है बस मेरा मेरा अपने
1: हाँ यानी गर्मी तक थकाया नसाया वातू गई है
0: बिल्कुल
1: हूं तो परदेसी बने नहीं पहले अच्छा आज डेले तू परदेसी बने ते परदेसी नहीं आखा चलो माशाल्लाह जी पेर उत खैर दम दम दी खैर हर दम दी खैर अल्लाह सोना ते कुथा खुश खुशहाल रखे ते साडो भी मरी बनन आले इंशाल्लाह बारिश दा मौसम बना खड़ा है
0: शुक्र अल्लाह पाक बतवा को इकट्ठा करे छ जे जरे ना अल्लाह पाक वो सब गर्मी है निके निके मशरूम बाल इन जानवर इन जरे ना पर इन दिन जरे ना गर्मी है वो सख्त
1: अजय रजा जो भी तू रेडियो की में सुनदा बे केरे तरीके दा
0: मैं जरे को बस ना सुनदा पे मैं को पता है जे थार आज प्रोग्राम है बस मैं घंटे की दी दिया थारो
1: अजय ने एक बिया तरीका सुनन दा ही भी ना गूगल इच लगा वैसे ऊंच लिख से www. रेडियो अमन डॉट उन्दे विच अगर तू सुखी जिंदगी जीवना चाहना है खुशहाल ते अमन आली ने वास्ते टच मोबाइल का फासला रख
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई इंशाल्लाह कुछ करें
1: देखा चलो अल्लाह सुना करम करे यार दोस्तों को संभाल चाहो इरे पर बैठे तो कोई सलाम तो पहुंचे
0: बिल्कुल एक तो पहले पहले था निजमान खटक को सलाम देने तो बिलाल निजमान बिलाल खटक को सैफ को सलाम है
1: जी जी पहुंच गया बिया कौन है
0: मैं बतला रही है कुतुब टांक जो हाजी से तुला उम्र देखी जो सलीम का दिखेले घर बुटे देखे तो मतियोला शेख है तो वसीम अवान है शेख गरे दिवी चे ते रमजान कुला चे और जैदी चे सादिक भाई चीने ते रमजान श्याल ते नियमा श्याल खाओ दिवी चे ते जितने तो सुन दे पैन आवाज मेरी ये काँ को सलाम
1: बहुं मुहब्ता जी बहुं मुहब्ता काल करन दा बहुं शुक्रिया

0: बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटपटा चटपटा दी चटपटा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, कितने केरी जमा दी पढ़ दे पुत्र?
0: वन
1: दे विच केरे स्कूल इज
0: आज का एजुकेशन सिस्टम स्पूटा।
1: वाह वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चाहिए से वडे थी के क्या बनसो?
0: फौजी।
1: वडे थी के फौजी बनसो?
0: जी।
1: चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया तुसा कॉल कीती है। कोई सलाम दुआ देसो क्या को?
0: जीया।
1: क्या को देसो?
0: आई आया को।
1: चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, कॉल करण दा बहुत शुक्रिया मीठा पुत्रा। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਆਏ ਆਯਤ ਫਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਯਤ ਫਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੇ ਦੇ ਪਿਆ ਹਾਥੀ ਰਾਜਾ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਪੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। अच्छा जेरी हुन कॉल आई है सही, अजतवा का माजरत करें जो बहुत वड़ा शोर आई ते आवाज़ दी सम

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
1: الحمد لله متا برا توادي يا شام موبايلي مون شور عند ابي اسي.
0: हेलो
1: आवाज आंदी है सही? आवाज नहीं आंदी पई। अच्छा तो का माजरत करें क्योंकि बाज दफा लैंडलाइन नंबर यानी वजह च खराब तो होंदी है तब आवाज कट वेंदी है। देख एक दफा वला दे के ने। अस्सलाम वालेकुम जी।
0: वालेकुम सलाम लाला, की हाल है जी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या हाल हवाल इन सही?
0: खैरियत है जी।
1: सादे गले छीना साहब
0: आपे
1: तो नहीं करना ना। सादे गली छीना साहबान सारे नाल और बड़े प्रोग्राम सुनने वाले सुनते भी रहते हैं, मुहब्बत बरते रहते हैं। छीना की पट्टी जी सारे सही जिला टांग का आखिरी सरैकी वसेब है। इंदे परुवत इलाका कुलाची की तहसील जी है, उंदा इलाका टकवाड़ा लग पैंदा है। और छीना एक एजाज़ हासिल है कि ये वाहिद पट्टी है जैदे साडे इलाके का खूबसूरत जरा खरबूजा है वह थी है। और ज़्यादातर लोग उन इलाके काश्त भी करें और वाड़ियाँ जो असाद हैं वो होंदियाँ उन लियारे टीटक भी पीले पीले खरबूजे भी बाज दफा तो चना जरा है इलाके का भी काफ़ी मशहूर होंगे। और छीना एक मुहब्बत की सरजमीन है, इन्हें बच्चे वे वे मुशायरे भी थे और वे वे नामवर जे लोग हैं वो जहाँ के उत्ते भी हैं। तो इं प्रोग्राम के जरा एक सिलसिला आंदा सही साढ़ा तो तुआडा जरा पाँच बजे का छी बजे का है वो अपने तोड़ को पुजाना लाए और इलाका जरा है वह मुहब्बत है। और असारी प्रोग्राम को पसंद करें दे पैन FM 88.4 अमर रेडियो की नशरियात को पसंद कराने वाले जे रहीन असारे गिलगित बल्तिस्तान तो दमान सराय की अदबी संगत के खूबसूरत शायर मोहतरम जनाब गुलनवाज साकी साहब जिन्हों का ताल्लुक गरा मिठू गए और ऊंजा के उत्ते मुकीम इन रोजगार के सिलसिले अल्लाह पाक उन्होंने रिस्क जान माल बरकत पावे और जित पेर उत खैर। और सारा प्रोग्राम पसंद करें दे पैन डॉक्टर कमर जमान कमर सदर दमान सराय की अदबी संगत जिला टांग और गरा चदरड़ दे नाल ताल्लुक है। उवें ही साडे प्रोग्राम को पसंद करें दे पैन मलिक गुलजार साहब जेरे के चदरड़ दे ही हैं, अशरफ जोशी साहब इन गरा मिठू तो बेहतरीन शायर भी हैं, बेहतरीन लिखारी भी हैं। उन्हें नाल नाल मलिक हारून चदरड़ साहब इन वो भी प्रोग्राम को पसंद करें दे पैन। नवान नौमी साहब गरा हयात तू प्रोग्राम को पसंद किया ने और उन्हें नाल नाल साडे शफीक इजहार मलाना साहब इन वो भी प्रोग्राम को पसंद करें दे पैन। दे नाल मलिक महबूब जंजुआ ते तासीन वो भी गरा छीना तू प्रोग्राम को पसंद करें दे पैन। और आधे पैन क्या तौला बलोच प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत है ते तुसा या मुहब्त का शुक्रिया कि तुसा साडे प्रोग्राम को पसंद किया। ते मैं सही एक बई गाल भी करें दा जुला कि साडे दमान सराय की अदबी संगत दे सदर इन मलिक अपना डॉक्टर कमर जमान कमर साहब और उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सरायकी नावा लादा पी है ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੰਨੀ। ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਰੀਤ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ, ਤਹਿਰੀਰ ਦਾ ਬਦਹਸ, ਨਸਰ ਦਾ ਬਦਹਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿੱਸਾ ਗਿਣ ਸਨ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਬਕ ਗਿਣ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਣ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੀ, ਔਰ ਜੁਰਮ ਔਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਹਿਰੀਰ ਕੋ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਿੱਸੇ ਕੋ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੰਨੀ। ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਜੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੂੰ, ਤੁਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤਬਸਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸੇ ਸ਼ੋਰਾ ਕੋ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਅਮੀਨ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ, ਸੀਨਾ ਬ ਸੀਨਾ, ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੋੜ ਕੋ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਸਹੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਉਨਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਥੀ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੋਚ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਅਰਮਾਨ ਅਰਮਾਨ ਅਰਮਾਨ ਓਵਿਨ ਅਰਮਾਨ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜੇ ਤਾਰਿਕ ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੇਵਕ ਬੇਰਾਤ ਔਲਾ ਬਲੋਚ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਸੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: Oh, 88.4

0: 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.4. You are listening to Radio Amar Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजाइत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बदोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
3: और आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं? इसमें एक छोटा सा ब्रोचर होता है, इसमें आप इसको रीड भी कर सकते हैं। तमाम आइटम इसमें मौजूद होते हैं, ये भी आप इसके साथ ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ एक बेस क्रीम है और एक इसके साथ इसका पंप आता है। इसको आप थोड़ा सा पानी से गीला करें और आप इसको इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ इसका मिरर भी आ जाता है और इसको आसानी से इसमें लगा होता है, इसको हटा के आप इसको यूज कर सकते हैं।

जी ग्रानु कदर मनोर विदुन को दा बिल्कुल परमिन काश मेडिक्स लाइव प्रोग्राम दा माता विले किसी आरजी तासीर आउसु बिल्कुल तासु पर खिदमत से हाजिर है कतासु हम च मसला भी मख पा हवाले सरा स्किन पा हवाले सरा या मसला मुही ब्यूटी पा हवाले सरा या मसला मुही दिविष्टानु पा हवाले सरा विष्टान मु वक्त मख तस्पिन सो स्पिन सो विष्टान मु स्पिन सारी स्लो स्पिन सारी खलेक अगर खलेक ची चटानी तूर और विष्टानी स्पिन दी जी बिल्कुल अगर खलेक चिकुम उस परेशान दी हैरान दी कुर्बान मुस डिपार्टमेंट का आस्मेडिक्स पे दुनिया ची तासु विष्टान तुरा वलो आओ जी चिटान स्पिन वलो दिपारा बिल्कुल याउनो बल्कि बिशुमार

हाँ जी अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट एंड क्यूट माय फेवरेट आरजे हाजी नमलाहाना ब्रो संग स्वीट ब्रो आई लाइक योर शो आई लाइक योर शो आई लाइक योर स्वीट क्यूट अमेजिंग वॉइस ओके पिम जलमी रेडियो वन नो शेयर एंड इज मी जुबेदा नूर